समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नतिचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं सुनते हैं शकील बदायूनी की गीत रचना, संगीत है नौशाद और स्वर है मोहम्मद रफी।

श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।

ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम पुच्छनायकाय नमः, ओम नवग्रह रक्षाम कुरु कुरु नमः, ओम मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु तेषु हृदयं त्वयितोषमेति, किं विक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः, कश्चित मनोहरति नाथ भवानत एहि। ओम नमः श्रीमन बलभद्र जय विजय अपराजित भद्रम भद्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं बटुक भैरवाय आपदुद्धरणाय महानमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टं विनाशय विनाशय नाना प्रकार भोग प्रदाय मम। आपण जेव्हा दुसऱ्या करता म्हणतो त्यावेळेला त्याचे नाव उच्चारून यजमानस्य असं म्हणून पुढे म्हणावे। सर्वारिष्टं हन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जयं कुरु कुरु। व्यवहार लाभं वर्धय वर्धय रणे शत्रुं विनाशय विनाशय वीणापत्ययोगं निवारय निवारय संत्युतिप्तिं कुरु कुरु। पूर्णं आयुः कुरु कुरु स्त्री प्राप्तिं कुरु कुरु। हुं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष रक्ष। युष्मदधिनं प्रत्यक्षं परोक्षं वा अजीर्णं पच पच विश्वमूर्ते अरिन हन हन। एकाहिकं द्व्याहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकं ज्वरं नाशय नाशय। चतुरधिकान वातान अष्टादश क्षयरोगान अष्टादश कुष्ठान हन हन। सर्व दोषान भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय नाशय। शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय। मम शत्रुं मारय मारय। उच्चाटय उच्चाटय। विद्वेषय विद्वेषय। स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय। विघ्नान हन हन दह दह पच पच मथ मथ। विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय। चक्रम गृहीत्वा शीघ्रमा गच्छा गच्छ चक्रेण हन हन। परविद्यां छेदय छेदय। चतुर्शीति चेटकान विस्फोटय नाशय नाशय। वातशूला विहत दृष्टिन सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पदान। आपरे बाह्यांतरादि विवंतरिक्षगान। अन्यान पि कश्चित देश काल स्थान। सर्वान हन हन। विषम मेघनदी पर्वतादीन अष्टव्याधीन सर्वस्थानानि रात्रिदिन पथगचोरान वशमानय वशमानय। सर्वोपद्रवान नाशय नाशय। परसैन्यं विदारय विदारय। परचक्रम निवारय निवारय। दह

द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम् रक्षाम् कुरु कुरु सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः सर्व प्रकार बाधा शमनम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीं ठस् स्वाहा शीघ्रम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु देवी शाबरी क्रीं ठस् स्वाहा शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णं आयुः कुरु हेमवती मूल रक्षां कुरु चामुंडाई देवे नमः शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु सती सरस्वती चंडिका देवी गलम विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुःखहरणं मंगलकरणं कार्यसिद्धिं कुरु कुरु।

नवग्रह शेष नाग पृथ्वी देवी आकाश निवासिनी सर्वारिष्ट शमनम कुरु स्वाहा। आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम ज्ञानम यशो बलम नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्त्र परिसंख्यया जपेत कवचमिदं नित्यं वाचां सिद्धिर् भवेत् तत्तः। अनेक विधिना भक्त्या कवच सिद्धिश्च जायते शतमावर्तयेदत्सु मुच्यते नात्र संशयः। सर्वव्याधि भयस्थाने मनसास्यतु चिन्तनं राजानुवशतां यान्ति सर्वकामार्थ सिद्धये। अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी देवी प्रियताम मम शुभम भवतु। नवनाथ सिद्ध मंत्र। ओम नमो सिद्धनवम अंगुष्ठाय नमः मुखाय नमो नमः। शीर ब्रह्म धुधुक्कार शीरसे ब्रह्म तनम तनम तनम नमो।

0: था।
1: महडगाव अति महसूर वरद विनायकाच तीत एक मंदिर, मंदिर लय साध सुध जस कौलारू घर, घुमटाचा कळस सोनेरी नक्षी नागाची।

श्रोते हो भक्तीसुधा इंटरनेट रेडिओवर आत्ताच आपण ऐकलीत नामसाधना, प्रस्तुती भक्तीसुधा।

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात अधिक मासानिमित्त उपासनेचा विशेष कार्यक्रम अधिक मास महात्म्य। अधिक मास पोथी वाचन भाग्यश्री केसकर। निर्मिती ओरायन स्टुडिओज पुणे। प्रस्तुती भक्तिसुधा।

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे।

श्रोते हो, भक्तीसुधा इंटरनेट रेडिओवर आत्ताच आपण ऐकलीत नामसाधना, प्रस्तुती भक्तीसुधा।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नति का आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं सुनते हैं शकील बदायूनी की गीत रचना, संगीत है नौशाद और स्वर है मोहम्मद रफी।

श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं पंडित उल्लास कशाळकर जी ने गाई हुई संत यारी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।